आवाज आवाज रहे ने इन्हों एक साथी है एक साइड पर खड़ा है उन कुछ नहीं नज़र आ रहा एक पास पैसे नज़र आ रहे हैं अपने साथी इशारा तेन पैसों का कह रहे हैं।